0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला दिउँसोको 3 बज्यो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला अपराह्नको 4 बज्यो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।
1: रेडियो बिहानी समय संकेत, यति बेला साँझको 5 बज्यो।

धीरे मैं अगनी मुनियम सभी दर्शक धन्यवाद हमें वीडियो अच्छी बड़ी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बेलुकीको 7 बज्यो।